जी ग्रानो औरिदन को गग आवाज दे द रेडियो अमन एफ एम 88.4 बटग्राम जी मुफ्ती अब्दुल कयूम प्रोग्राम दे इलाज और सुन्नत नबवी दा प्रोग्राम रोजाना दिल सुबह जो ना तरियोल सुबह जो पूरे पर रेडियो अमन एफ एम 88.4 बटग्राम मंते बरह रास्त हस्त पेश की ग्रानो औरिदन को दा प्रोग्राम तासु तब पेश की एसेड गो द मेदी सीरप कदी चाप मेदे के जख्म वी तेजाबियत वी खुले ने बदबीन राजी खुराक न हजमी की अगी द एसेड गो सीरप इस्तेमालोली शी दगा शांति कदी चाप जिसम के सके किस्म कमजोरतिया वी ताकत ने वी या सख किस्म हम कमजोरतिया अख महसूस की या वाड़ो माशुमान दी अगी خوراک نه کی نو اغي لتاسو ورکول شي پاور ایکس انرجی ټانک او د دوړ سیرپ په تاسو ته ملاويږي.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम मुंग सरी उसे।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

ऑकेजन आप कलर मंदिर रिंकू राव प्रोग्राम नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सरोज सदीकी न्यू चिटा उस्तमा खबर ओगला नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम जान रावाखले दमख नमुदानी दाहुना तिरसरी जुरियानी सरगुलान दे हल्के पगिरंटाई जी मवारे से रहत में कहे हाँ कदरमंद और इकुन को नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम बताओ सर बटग्राम पर हर मेडिकल जनरल एंड कॉस्मेटिक स्टोर की मिलाएगी सही रहा मजीद मालूम तो दफार हाँ बड़े नंबर माने बिल्कुल तासु कॉल को वाली शे 0319-98-98-841 0319-98-98-841 प्रोग्राम तो तासु लाइव कॉल को वाले प्रोग्राम तो तासु मैसेज को वाले नतासु पर 0319-15-17-094 बांधे कवले शे हाँ 0319-15-17-094 कदरमंदर इनको व्हाट्सएप मैसेज हम तासु कवले शे 0319-15-17-094 बांधे दखपली मौजूद गे एहसास मुंगता रखवले शे सही दा

0: रेडियो अमन नेटवर्क
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया ले
3: मोहब्बत समेट कर

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: नाश्ता हुकम नुस्तर की राबंदी तूरी तूरी की गी
1: दिलबरा न तमाता न वाय ददी मसाले खो डेर आसान हल दे
0: अंकल जी हगस
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर खो मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी पावर एक्स एनर्जी टैनिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोड़ दे और तेज मंड वही
2: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्तासु वजूद कमजोरी दी हर वक्त बेदमाए पमखमु तिर सरीवी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की दी दकीना स्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहाग माशुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोली याद साथ है पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878
3: रेडियो अमन रेडियो अमन द अमन आवाज स्तासु आवाज
4: ग्रानो और दिन को तासो आवाज और द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे

नंबर हुमा राबिता कवली शेख 0356-75-501 और बिल नंबर दे 0356-95-022 राम कला दाऊस सासुदा खादियो और रंगुनो जामेन

0: के घर से कोई हुआ तो फिर क्या होगा, उसका भी वही हशर होगा जो हमारे घर से होगा। और हमारे घर वाले अल्लाह पाक के करम है, वो कहते हैं वो द्रन खलक द्रनी खबर है, चरता स्पक खलक
1: स्पक खबर है।
0: हाँ स्पक है, हाँ भाई अरे हमारे घर में इस तरह कोई भी बंदा नहीं
1: है। स्पक खलक स्पक खबर है, चरता द्रना खलक
0: द्रनी खबर है। जम के कुर के दास दा मोर रावड़े ना साच दास हरकत वकी, वरना उसको मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। रियली आई एम नॉट जोकिंग टू यू गाइस। Khan, next match of the show was that Tabriz, the Malik Nayariji, the Khuda se ligyande lakachi chap zor rawaste wi da Tabriz mag neri ke Tabriz se kam ja galak shanda ke tabiyat down shona ke lo je wi la le Tabriz mashallah der zabardast aur tawai chi well educated well qualified aur kam de khabar andaz communication skill de galiz yet strong de specialist comes out away cherry english band ki grip hasil kare alhamdulillah zabardast kha. Next match of the show was mamu tabriz mamu kahan se aur uski awaz nahi hai. Tabriz mamu jo hai wo char sada peshawar se belong karta hai aur uski awaz pata nahi abhi wo hai nahi, to uski awaz kahan se aayegi, jab wapas aayega to uski awaz bhi aayegi. Next match of the show was tasanga show nice. Acha assalam alaikum تاسو څنګه یې شو ناشته ز عارف شاه یما بالا باندې نه. Thank you Mrs. عارف شاه, we have a call and let's try to pick up attend your call. سلام علیکم جی. ہاں صحیح ده, اوکے جی, تیرا بھی کام ہو جانا میرے پر, فکر نہ کرو, ہم ہیں

नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज स्टॉप इट, बस करो, ऐसा तो ना बोलो। कसम से बहुत अजीब हूँ दूसरों के बारे में, ऐसा क्यों बोलते हो? अच्छा जी, किसके बारे में बोला, माफ कीजिएगा। वो क्या कहते हैं, कम वो बंदे हैं जो पर्सनल को खुलेआम लाते हैं। नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज